हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par.
5: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़ा सां गॾु ज़ीरिच रवानो थी वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका टेक्निकल ॻाल्हियुनि में हिसो वठंदा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि बाबति मामला सुठे तरीक़े सां हली रहिया आहिनि। आमना हुरमुज़ में तेल जी सप्लाई जंग खां अॻु वारी सूरत हाल ते वापसि अची वई आहे।

फायरिंग करी शहीद कयो। हथियारबंदनि पारां शहीद अहलकारनि जा सरकारी हथियार खणी वञण वारे मामले जी जांच जारी आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ इलाइक़े जी नाकाबंदी बि कई आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ॿिन अहलकारनि जी शहादत जो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ वॾे वज़ीर चयो आहे त बुज़दिलाणियुनि कारवायुनि सां पुलिस जा हौसला कमज़ोर नथा थी सघनि। कातिलनि खे जल्द गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आंदो वञे। सिंध में खतरनाक हद ताईं पाणी जी खोट कोटड़ी बैराज जे डाउन स्ट्रीम में गुज़िरियल ॾेढ महीने खां पाणी छोड़ण मुकमल तौर ते बंदि। दरियाह जे पेट में वारी उॾामण लॻी। कोटड़ी 1195 किसक 98.0 रिकॉर्ड कराची वाह फुलेली पिंजारी ऐं फुलेली वाहन में पाणी जी शदी खोट। हैदराबाद बदीन सिजावल फसल सुकी विया। पाणी न अचण कंहिं सूरत

0: केस जो फैसलो बताया। छह साल कैद की सजा टोड़ा अदालत कोट लखपत में केस जो अठ सौ एकड़ जमीन की अलाटमेंट रद्द करने वाले फैसलो बरकरार। सिंध हाईकोर्ट गैरकानूनी जमीन में फायदो वठणंदन जो कराची की जानायल जमीन खामोशी से अन्न की मानों के गरी रकम में विक्रो कई वही हुई। सिंध हाईकोर्ट जमीन की अलाटमेंट रद्द करने वालों नेब जो फैसलो बरकरार रखी। कंदकोट में फुर दौरान मज़ामत ते जख्मी थियल वापारी फोत। फुर मज़ामत ते जख्मी थियल शहरी अशोक लाल सखर जी अस्पताल में फोत थियो। मिर्ज़ापुर रिसालदार रोड ते फुर दौरान मज़ामत ते हथियार बंधन अशोक लाल के गोलियों हणी जख्मी कयो। कातिल गिरफ्तार किया वञे। टुल भरसां पैसनि जो ज़ामिन न पवण तां भाव थां भाकत। बहादुरपुर में जाबदार हुज़ूर बख्श बुकटी पांजे भाव अहमद बख्श न पवणे
1: आक तेल पुत्र मोसन मोहन के चवे तो बाबा बीमार ये कमकार सजो कौन तो संभाले बाबा रिटायर थी वो और ना ना

0: कराची वालों घर गाड़ियों पंपूस जमीन वापस करो वे
1: ऐं मटियाली जी सियासी शख्सियत मखदूम फज़ल ऐं संदसि पुटु मखदूम मोहसन विच में इख़्तिलाफ़ वधी विया। मखदूम फज़ल पंहिंजे नए वीडियो बयान में चयो आहे त मुंहिंजो बेदख़ल कयल मखदूम मोहसन चवे थो त मुंहिंजो वालिद बीमार ऐं रिटायर्ड आहे। ऐं हुन बीमार आहियां न ई रिटायर्ड आहियां। मखदूम मोहसन मुंहिंजी बीमारी दौरान 4 करोड़ रुपियनि जी कणक विकिरो कई। कांस कणक जो हिसाब घुरियो त हिन हिसाब न ॾिनो। मखदूम मोहसन खातो पंहिंजे नाले चई मुझे कमदार ऐं ठेकेदार खां करोड़ रुपया वठी वियो।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
5: कुरान कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है हाशमी।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
7: वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है, जिसे चाहता है उसमें इक्तदार दे देता है। यानी दुनिया में किसी कौम को इक्तदार का मिलना, किसी फिरौन को इक्तदार का मिलना या किसी अल्लाह वाले को जमीन में किसी कुव्वत का मिलना, ये सब उसके अपने फैसले हैं। ये कुव्वत वहां से मिलती है। वलाकिबतु लिल मुत्तकीन, अच्छा अंजाम तो तकवा वालों का है। खास सियासी मामलात हो, दुनियावी हो, कुछ भी हो या इनफरादी हो, इसमें तकवा नहायत जरूरी है। इंसान किसी जुल्म व सितम का शिकार होकर कोई ऐसा कदम न उठाए कि जिससे वो मजीद जालिम की सफ में जा खड़ा हो। यानी तकवा क्या है कि इंतहाकों पर भी, इंतहाई तकलीफ दे परेशान कुन सूरत हाल के मौके पर भी इंसान काम वही करे जो अल्लाह की रजा का है, जबान से सिर्फ वो निकाले जो अल्लाह की पसंद का है, अपने हाथ से सिर्फ वो काम करे जिससे अल्लाह की रजा हो, और कोई भी ऐसा तरीका जल्दबाजी में या जुल्म व सितम का शिकार होकर न कि जिससे अल्लाह की नाराजगी सामने आए। और इस मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है कि आपने अपने दुश्मनों के साथ किस तरह मामला किया। कालू, उन्होंने कहा, उज़ीना, हम अज़ियत दिए गए, मिन क़ब्ल अन तअतियना, इससे पहले कि तुम हमारे पास आए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले बनी इसराइल पर

0: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS, नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas
3: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हुजूर के जिक्र में ही सुरूर है। वो मदीना जो कौने इनका ताज है, दुनिया की पेरिस को क्या कहते हैं, दुल्हन कहते हैं। पेरिस को क्या कहते हैं, दुनिया की।

ईरान ऐं अमरीका विच में मफ़ामती यादाश्त नामे ते ॻाल्हियुनि जो बि॒यो मरहलो अॼु थींदो। ईरानी वफ़द स्पीकर बाकर कालीबाग जी सरबराही में ज़ीरो पहुची पियो। अमरीकी नायब सदर जेडी विंस बि स्विट्ज़रलैंड रवानो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ आला सतह वफ़द सां गॾु ज़ीरो रवानो थी पियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका टेक्निकल ॻाल्हियुनि में हिसो वठंदा। अमरीकी नायब सदर जेडी विंस चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि बाबति मसला सुठे तरीक़े सां हली रहिया आहिनि। अबनह हुरमत में तेल जी सप्लाई जंग खां अॻु वारी सतह ते वापसि अची वई आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
3: GAFM 91.6।
4: वो मदीना जो कौन है इनका ताज है, दुनिया की पेरिस को क्या कहते हैं, दुल्हन कहते हैं। पेरिस को क्या कहते हैं लोग, दुनिया की दुल्हन कहते हैं। बेकलों का ठिकाना है कौन, इनका दूल्हा मदीने में, कौन इनका दूल्हा मदीने में। पेरिस दुल्हन कैसे हो सकती है, दुनिया की दुल्हन तो मदीना है। जिसने मदीना शरीफ को दिल की आंखों में देखा तो उसे फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो जब इश्क इस कदर बढ़ जाता है तो वो कहता है कि मेरी नजर को भाए दुनिया का हुस्न कैसे, मेरी नजर को भाए दुनिया का हुस्न कैसे, आंखों में बस गया है मदीना होना। काश हम दिल की आंखों से हुजूर का मदीना देख लें। वो मदीना जो कौन है उनका ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदादार मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। अल्लाह हम तमाम को हाजिर नसीब फरमाए, बार बार बा अदब हाजिर था फरमाए। ये मदीना वहां जाना तो बड़ा शर्फ की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है, लेकिन ये वो अर्ज मुकद्दस है कि मलाइक लगाते हैं आंखों में अपने शबो रोज खाके मजारे मदीना। और ये वो मुकद्दस बारगाह है कि अदबगाह ही जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर गम नहीं आया जने दुबाया दीनी जा जा। शायर इसी बात को दोहराते हैं, कहते हैं

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: वफाकी गृह वजीर मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरान सदर मसूद पेशियान से मुलाकात। ईरान अमरीका गालन के बे दौर समेत खिते सूरत हाल जंगबंदी मुआदे से गालू।

इसराइली वज़ीर आज़म ईरान जी सख्त रद अमल बाद फौज के लबनान में कार्रवाई रोकने जो हुक्म दई छो। इसराइली मीडिया चवण आए तो नेतन्याहू बचाव वाले वजीर इसराइल कांड से मशवरे बाद लबनान में हमला रोकने जो हुक्म दिनों। ईरान पारा मुआहदे तां हथ खण अपना हुरमस बीहर बंद करने वाले चिताव बाद अमरीकी सख्त रद अमल से इसराइल कार्रवाई रोके छी। उन लबनान के मुख्तलिफ जहरन से इसराइल की फौज बमबारी में सत शहरी शहीद ए केतरा ही जख्मी थी। रात वीगो गाड़ी जो मोटरसाइकिल के टक्कर लगने सबब औरत ने बारह सौ पंज जना फौत हादसे में सिकंदर जो गया। समूरन फौतन जलाश गिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस मौजूद वीगो गाड़ी के तहवील में वही मालिकन की हिरासत में वरतो व्यो है।

0: शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 73 जन्म ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दंग ॾिना, जुरत ॾिनी, क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। अथसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खे जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमीद जी अलामत तौर यादि करे थी। टणो मोमिन खान में पुल न हुजण सबबि जनाज़ो सिम नाले मां गुज़ारियो वियो। वीडियो वायरल गोट हामिद चांडियो में फोती अमीर बख़्श चांवरी जनाज़ो कारो घुंगड़ो सिम नाले मां गुज़ारियो वियो। ॻोठाणो जो चवण आहे त इंतज़ामिया जी नाअहली लाइ हिकु पुल बि ठाराए न ॾिनी वई। ॻोठ में ॿिनि बुनियादी सहूलतुनि जी खोट सबबि ज़िंदगी अज़ाब बणियल आहे। ऐं मटियारी भरिसां नौजवान जो सिंधू दरिया मां लाश हथ कचे में काठियूं करण लाइ वियल। हारा पुराणा वासी आयु भटी बुरी फौत थी वियो। लाश घर पहुचण ते रोज ॾाढो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: Express PM. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: ईरान के सख्त अमलबाद फौज के लबनान में कार्रवाई रोकने जो हुक्म दे छो इसराइली मीडिया छोड़ा तो नेतन्याहू बचाव वाले वजीर इसराइल कांड से मशरे बाद लबनान में हमला रोकने जो हुक्म दिनों ईरान पारा मुआदे हथ खण अब नहर मजमीर बंद करने वाले चेताव बाद अमरीकी सख्त रद्द अमल से इसराइल कार्रवाई रोके छदियों उनका लबनान के मुख्तलिफ शहरों से इसराइल फौज की बम्बारी में सत शहरी शहीद ए केतरा ही जख्मी थी पाया।
6: टॉक स्विट्जरलैंड में हो रहे हैं पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस मुजाक।
5: वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ बर्गन स्टॉक पहुंची पे है ताजा तरीन नवा के फोटेज दिखारियों पे बर्गन स्टॉक पहुंची पे है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ बर्गन स्टॉक पहुंची पे है ताजा तरीन मंजर अवा के दिखारियों पे मोहम्मद शहबाज शरीफ बर्गन स्टॉक पहुंची पे है। अमरीका ईरान हवाले से जका मुजाकरा थी रहन उते मोहम्मद स्टॉक पहुतल ताजा तरीन फोटेज दिखाऊं पा। अमरीका ईरान मुजाकरा के हवाले से बर्गन स्टॉक थी रहा जिथे मोहम्मद शहबाज शरीफ बर्गन स्टॉक पहुतल

वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बरगन स्टाप पहुंची पिया आहिनि। ताज़ा तरीन फुटेजिस असीं अव्हां खे ॾेखारियूं पिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बरगन स्टाप पहुतल आहिनि। अमरीका ऐं ईरान तकनीकी मुज़ाकरात जे हवाले सां बरगन स्टाप पहुतल आहिनि। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द सां गॾु स्विट्ज़रलैंड जे शहर स्टाक पहुतल आहिनि। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां गॾु मौजूद आहिनि। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल ईरान अमरीका गार्डन जे ॿिए दौर में शिरकत कंदा ऐं उते पहुतल आहिनि। ताज़ा तरीन फोटेज असीं अव्हां खे ॾेखारियूं पिया।

0: ईरान सां ॻाल्हियुनि लाइ स्टेविटकोफ ऐं चेट कुशनर अॻु खां स्विट्ज़रलैंड में मौजूद आहिनि, जिथे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ बर्गन स्टाक पहुतल आहिनि, जिथे ईरान अमरीका जंग जे हवाले सां मुज़ाकरात थी रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड पहुची वियो आहे। आलसिता तकरीब में शिरकत करण लाइ वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड जे शहर स्टॉक पहुतल आहिनि। अव्हांखे लाइव ॾेखारियूं पिया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर में शिरकत लाइ बर्गन स्टॉक पहुतल आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6। अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you.
3: करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी, है में डायमंड ग्लो।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: आप सुन रहे हैं डीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मौजूद ईरानी वफद सरबराही स्पीकर बाकर कालीबाग सरबराही कर रहे वाहे ईरानी पर वजीर

शहीद मोहतमा बेनदीर भुट्टो की टेहतरी जन्म दिहाड़े के मौके से सदर आसिफ अली जरदारी चयो तो शहीद बेनदीर भुट्टो औरतन सियासी शमूलियत के नवा दग दिना जुरत दिनी ए क्यादत जहां नवा दरवाजा खोलिया नजरियो अज पाकिस्तान के मुस्तबिल लाए रहनुमाई है कौम के जमूरियत खिदमत ए उम्मीद के अलामत तौर याद करे थी। बिलावल भुट्टो जरदारी तो शहीद मोहतरमा बेनदीर भुट्टो एक जमहूरी तरक्की पसंद ए चैन सूबन की जंजीर हुई मजबूत वफाक बाख्तियार मुल्क ए आइन की बालादस्ती शहीद बीबी जो नजरियो हो।

सीपीएम पी नईम खरल कैंसर सबब कराची निजी अस्पताल में लाराणो करे पो नईम खरल केतरे ही अरसे का जिगर ए कैंसर की बीमारी में मुबतला हो नईम खरल पीपल्स पार्टी की टिकट त पंज भेरा एम के चूंडियो पो सन वेझो कोयले की खाण में बपोरियत फौज खाण मिलण दौरान ड्रम जो जंजीर टुटी पो हादसे सबब जुम्मन ए नादर राजड़ फौत थी पौतकल पौतन के लाज जरूरी कार्रवाई लाइ मकामी अस्पताल मुंतकिल कया विया।

समारोह में शादी का इनकार से नारी मंगेंदी अता कुआड़ी मणी कतल गोट गुलाम हुसैन कोसो में जवाबदार गुलाम रसूल कोसो पंज मंगेंदी इस असमा कोसो के कतल कर छोड़ो लाजरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 1:15 PM.
3: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
5: GFM 91.6।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
5: वारे वज़ीर इसराइल कांड सां मशवरे बाद लबनान में हमला रोकण जो हुकुम डि॒नो। ईरान पारां मुआदे तां हथ खणण ऐं अपने हुरमत बीहर बंद करण वारा चिताव बाद अमरीका जे सख़्त रदअमल ते इसराइल कार्रवाइयूं रोके छॾियूं। उन खां अॻु लबनान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते इसराइली फ़ौज जी बमबारी में 7 शहर ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थी विया।

शहीद मोहतरमा बेनदीन भुट्टो जो 73 जन्म ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनदीन भुट्टो खे जनम ॾियारी जे मौके ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ी किराए सां मंज़ूर करे वरितो। गढ़ी खुदा बख़्श भुट्टो में शहीद बेनदीन भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान ख़ुवानी बि कई वई। कंदकोट ऐं ॿियनि शहरनि में केक काटे शहीद बेनदीन भुट्टो खे भेटा पेश कई वई।

करें थी बिलावल भुट्टो तारीख तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जमहूरी तरक्की पसंद चैन सुबन की जंजीर हुई मजबूत वफाक पान की बालादस्ती शहीद बीबी जो नजरियो हो। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमुन चाहवाए तो अमरीका ईरान माहदे में फील्ड मार्शल जो किरदार बेहतरीन रो दुनिया में पाकिस्तान के अमन पसंद मुल्क तौर सुतो अमुन आने रो है वेचोभर में अमुन लाय पाकिस्तान अहम किरदार अदा किया। सिंध असेंबली में गालाइंदे शर्जील ना मुझी सोच ए वेजन अज भी नौजवान लाए मशले रहा है शहीद बेनज़ीर भुट्टो सारी जिंदगी अवाम जो आवाज बन की गुजारी शहीद रानी पेरी औरत वजीर आजम बन की सियासी क्यादत की तारीख लिखी शहीद रानी मुल्क के मिसाइल टेक्नोलॉजी लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम दिनों।

पीएमपीए नईम खरल कैंसर सेवा कराची ने जिस अस्पताल में लाराणो करे वो नईम खरल केतरे मफला हो पुलिस पार्टी टिकट तन वेझो कोयले की खाण में बपोरत फौत खाण में लड़ने दौरान ड्रम जो जंजीर टूटी पो हादसे सबब जुम्मन और नादर राजर फौत थी वह शादी का इनकार से नारी मंगे थी अत कुआरियों हणी कतल घोट गुलाम हुसैन कोसू में जवाबदार गुलाम रसूल मंगेदी असमा खोसो के कत्ल कर छो ला जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले वाके जो केस दाखिल।

बाज़ियाबी लाइ वारसनि पारां पैदल मार्च चटा जा मानिकतल नारीअ जा वारस एस एस पी पैदल मार्च कंदा। वारसनि चवण त पुलिस रुगो आसरा ॾेई रही आहे, बाज़ियाब कराए परेशानी ख़तम कई वञे।

0: टनो मोमन खान में पुल नौजवान सवाब बिनादो सिम नाले में गुजारियो वो वीडियो वायरल गोट हामद चांडियो में कोती अमीर ब्लॉक में गुजरण के नाअहली लाए जो एक पुल न ठाराई वही है गोट में बुनियादी सहूलत की खोट सबब जिंदगी अजाब बनल है।
1: FMN News।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.1।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 2:30 PM। This time check is brought to you by
3: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemmé Diamond Glow Bleach Cream।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: जीए एफएम नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।
0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
7: ناد علی مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: पैंचेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

इस्लामाबाद मफामती यादाश नामे ते बेमरली ला गालियों स्विट्जरलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में जारी गालियों में वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बट शरीक नायब अमरीकी सदर जेडेविन सरबराही में विटकोफ ए जेड कुशनर मौजूद ईरानी वफद के आखिरकारी बाद सरबराही कर रहा है ईरानी पढ़ी वजीर अब्बास इराकची ईरानी मरकजी बैंकिंग जो गवर्नर ए बया मौजूद।

पीपीएमपी नईम खरल कैंसर सबब कराची निजी अस्पताल में आराम करे पो नईम खरल केतरे ही अर्से का जिगर कैंसर जो नईम खरल पीपल्स पंज फेरा एमपीए चूंडियो पो सन वेझो कोयले की खाण में बोरियत फौत खाण में लड़ने दौरान ड्रिब जो जंजीर टुटी पो हादसे सबब जुम्मन ए नाजर राजा फौत थी पहुंचल फौतन जहा लाज जरूरी कार्रवाई लाइ मकामी अस्पताल मुंतकिल किया व्या।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

راز جو ہے اس کا راز ہے یہ, خلقتوں میں رب کا ناز ہے یہ.

یا سیدا یا مرتضی یا سید کربلا سب سے

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खत्म हो टुकड़ियाँ स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, देता निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है
3: कुत्ते की बन

सजाया हुआ नूरी दरबार है, पास मेरा अली सरकार है। जैसा हूँ जहाँ भी हूँ अली ही संग संग है, इश्क अली ने किया मुझे रंग रंग है अली का।

0: हक सच जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: जिस धरती से जुड़ा है बाज
3: ये बनी है

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर,
2: उसी बन
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध
0: हरी F.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: धरती से जुड़ा है कलंदर लास्ट
2: की
1: जीए FM नेटवर्क।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सहयोग करे छो ईरानी सदर मसूद पशकियान है तो ईरान सदाई वाजे किया है तो वह एटमी हथियार नो ठा चाहे। ईरानी सदर मसूद पशकियान अमरीका के या गणती है तो ईरान वट एटमी हथियार न होजन। शहीद सुप्रीम लीडर भी सदाई वाजे हो तो वह एटमी हथियार नो चाहे। तय थियल मफामती यादाशनामे जो समूरू शिकू ईरान के मफाद में ईरान जा 6 अरब डॉलर जा असासा बहाल कया वन। इस्लामाबाद मफामती यादाशनामे ते बेमरले की गालिन दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ नायब अमरीकी सदर जे डी विंस विषय में मुलाकात। स्विट्जरलैंड मुनीर भी मौजूद। अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान से मोहब्बत से अमन लाइर विच में विटको पनाटी जेड इस्लामाबाद मफामती बे स्विट्जरलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में जारी
2: पूरी बस है बेहतरीन हॉस्पिटल हुई आस्ते आस्ते पहुंचाई जो अज ये
3: क्रॉप ग्रुप का ब्रिज मजबूत तने और सेहतमंद मुंज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैराला सन क्रॉप डायमंड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
4: नया साथ और वो कीमत में 5 रुपए की बचत के साथ कुदरती मजबूत
3: सबका डायमंड हासिल किसान खुशहाली की
5: बैटरी तमाम पखन के मुकाबले जबरदस्त हवा तहां बिक रॉयल इन्वर्टर फैंस
6: तुम स्कूल में क्यों रहती हो?
7: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
6: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे,
7: सिर्फ स्मेल रहेगी आगे।
0: आप सुन रहे थे जीए पर KTN न्यूज।
8: से बंदा हुआ
9: GAT8 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सच जो आवाज बदलता रहो
1: जुड़ा है कलंदर लास्ट जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।

0: अरब की सरजमीन पे एक ऐसा कुआं था जहां वो जिन्नात रहा करती थी, जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू न कर सकी।
1: बस
0: जब रसूल अल्लाह जंगे सकाका से वापस आ रहे थे तो तमाम असहाब प्यासी थी। इतने में रसूल अल्लाह का एक सहाबी हारसा के कहता है, या रसूल अल्लाह, यहाँ एक पानी का कुआं तो है लेकिन उस पर जिन्नात काबिज हैं, किसी को भी वहाँ से पानी लेने नहीं देती। बस कुछ असहाब जाते हैं की कोशिश करते हैं लेकिन अफसोस नहीं देते हैं। मैंने जैसे ही सहाबी
1: और
0: आए अली जा तमाम जिन्नात को मुसलमान कर दो, मौला अली अलैहिस्सलाम जुल्फिकार लेके उस कुएं की तरफ आते हैं,
1: आवाज देते हैं, कौन है
0: जो प्यासे इंसानों को पानी से रोकता है। जिन्नात की आवाजें आती हैं कि ये हमारी जागीर है, अगर ताकत है तो नीचे आके लड़ो। इमाम कुएं में जाते हैं और तलवार निकाल के जिन्नात से जंग करते हैं। बस ऊपर से तमाम असहाब देखते हैं कि आग है और अदाएं आसमानों में गूंजने लगती हैं और तमाम जिन्नात इमाम अली के कदमों पे गिर के इस्लाम कबूल करते हैं। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम उन जिन्नात में से

0: ताकि अल्लाह ने तेरा आम के सर पे सजा दी। दखो खैबर हो बद्र ओहद हो हर जगह आप रसूल अल्लाह की नुसरत करते रहे, इस्लाम का अलम बुलंद करते रहे।
1: कोई भी
0: ऐसा मैदान नहीं जिसमें आपको शिकस्त मिली हो, क्योंकि हर जगह अल्लाह ने फतेह को

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: एफएम आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जुड़ा है बाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर किट। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान ऐं अमेरिका विच में हिन वक़्त स्विट्ज़रलैंड में ॻाल्हियूं जारी आहिनि। बर्गनस्टॉक मां क्या क्या कयो पिया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर जी ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे। कुझु देर बाद हिन अहम मफ़ामती याददाश्त नामे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर विच में ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे, जॾहिं त मुलाक़ातूं बि थियूं आहिनि। अहम ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जॾहिं त घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी बि गॾु हिन वक़्तु वज़ीर आज़म सां गॾु मौजूदु आहिनि। बेल्जियन स्टॉक मां क्या क्या कयो पिया। ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद MOU ते टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। बेल्जियन स्टॉक मां क्या क्या कयो पिया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर JD Vance जी ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे। वज़ीर आज़म जो चवणो हो त ईरान ऐं अमरीका जी ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान ट्रैकड़ी कंदड़ तौरु शरीक आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ वधीक चयो आहे त असां सभु गॾिजी दुनिया में अमुन क़ाइम करे सघूं था। JD Vance जो चवणो हो त ईरान ऐं अमरीका जी ॻाल्हियुनि में वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जो अहम किरदार आहे। अमरीकी नायब सदर जो वधीक चवणो हो त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त माण्हू आहे। स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गनस्टॉक में हिन वक़्तु ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद MOU तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। बर्गन मां क्या क्या कयो पिया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर JD Vance ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे। JD Vance पारां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाखाण कई वई। अमरीकी नायब सदर जो चवणो आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहितरीन सपेसालार आहे। JD Vance वधीक चयो त ईरान ऐं अमरीका जे ॻाल्हियुनि में वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जो अहम किरदार रहियो आहे। वज़ीर आज़म जो चवणो आहे त ईरान ऐं अमरीका जे ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान त्राकड़ी कंदड़ तौरु शरीक आहे।

0: असां वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त असां सभु गॾिजी दुनिया में अमुन क़ाइम करे सघूं था। बर्गन स्टॉक मां मूंखे आगाह कयो पिया, ईरान ऐं अमेरिका विच में इस्लामाबाद MOU तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर JD वेंस ॻाल्हि ॿोल कई आहे। JD वेंस पारां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाखाण बि कई वई आहे। अमरीकी नायब सदर जो चवणु आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहितरीन सपेसालार आहे। JD वेंस चयो त ईरान ऐं अमरीका जी ॻाल्हियुनि में वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल अहम किरदार अदा कयो आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त ईरान ऐं अमरीका जी ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान ट्रैकड़ी कंदड़ तौरु शरीक आहे। वज़ीर आज़म वधीक चयो त असां सभु गॾिजी दुनिया में अमुन क़ाइम करे सघूं था।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज,
0: संगीताबाद मटियारी 2.6।
1: जिस बड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: 6:15 PM.
4: This time check is brought to you by
5: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
0: Hak sach jo awaz, geet sangeet jo awaz, ye Hyderabad Matiyari FM 91.6, Sindh jo awaz, udhanda raho.
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरत जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज

0: मेरी शान भी तू।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जे FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आखाण जोगो आहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सपह सालार आहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण हो त ये आलमी अमन लाइ अहम मौको आहे।
2: हक सच जो आवाज
1: ट्रंप जी मौत पर क़यादत सबब गालियो मुमकिन थियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गालन लाइ अहम किरदार अदा कयो।

ईरान एटमी हथियार न ठाहिण वरी मुल्क फतेह सयूं करे चुको आहे। ईरानी सदर मसूद पशिकियान जो चवण हो त ईरान सदाई वाज़े कयो त हू एटमी हथियार नथो ठाहिण चाहे। ईरानी सदर मसूद पशिकियान चयो त अमरीका खे इहा गणती आहे त ईरान वटि एटमी हथियार न हुजनि। शहीद सुप्रीम लीडर बि सदाई वाज़े कयो हो त हू एटमी हथियार नथो चाहे। तय थियल मफ़ामती यादाश्त नामे जूं समूरियूं शिकूं ईरान जे मफ़ाद में आहिनि। कतर में मंजमंद ईरान जा $6 अरब जा असासा बहाल कया वञनि। ईरान इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे जी बे दौर जी ॻाल्हियुनि में लबनान में जंगबंदीअ खे मर्कज़ी नुक़्तो करार ॾेई छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई जो चवण हो त अमरीका लबनान में जंगबंदी यकीनी बणाइण में नाकाम रहियो आहे। असासनि जी बहाली ऐं ईरानी तेल तां पाबंदीअ जो ख़ात्मो मुतालबनि बे ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो 73वां जन्म दिहाड़ो अॼु मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे जन्म दिहाड़े जे मौके ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ी राय सां मंज़ूर करे वरितो। कड़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान फ़ानी बि कई वई। कंबर, कंदकोट ऐं ॿियनि शहरनि में बि केक काटे शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे भेटा पेश कई वई।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दग ॾिना, जुरत ॾिनी ऐं क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खेसि जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमेद जी अलामत तौर यादि करे थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु जमहूरी, तरक़ी पसंद ऐं चइनि सूबनि जी ज़ंजीर हुई। मज़बूत वफ़ाक, बाख़्तियार मुल्क ऐं आइन जी बालादस्ती शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो नज़रियो हो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त अमरीका ईरान वाइदे में फील्ड मार्शल जो किरदार बहितरीन रहियो। दुनिया में पाकिस्तान खे अमुन पसंद मुल्क तौर सुञातो वञे थो। पाकिस्तान समूरी दुनिया में अमुन आणे रहियो आहे। विचोभर में अमुन लाइ पाकिस्तान अहम किरदार अदा कयो। सिंध असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमन जो चवण हो त शहीद राणे जी सोच ऐं विज़न अॼु बि नौजवाननि लाइ मशल राह आहे। बेनज़ीर भुट्टो सॼी ज़िंदगी अवाम जो आवाज़ बणजी गुज़ारी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणजी सियासी क़यादत जी तारीख़ लिखी। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क खे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ऐं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम ॾिनो।

ऐं पंहिंजी थकावट लिकाए औलाद जी मुस्कुराहट में सुकून ऐं ज़िंदगी ॻोल्हण वारी अज़ीम हस्ती पीउ खे लखे सलाम। अॼु दुनिया में पीअरनि जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। पीउ जी मोहबत, रहनुमाई ऐं बेलोस कुर्बाननि खे सलाम, जेको औलाद खे सुठो सताबो रखण लाइ दुनिया जूं सख़्तियूं ऐं तकलीफ़ूं बर्दाश्त करे थो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: GAFM नेटवर्क
6: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

आया हुआ नूरी दरबार है, मेरे आसपास मेरा अली सरकार है। जैसा हूँ जहाँ भी हूँ अली ही संग संग है, इश्क अली ने किया मुझे रंग रंग है। अली का मलंग हूँ मैं, अली का मलंग, अली का मलंग।

जाने अल्लाह जाने वसदा है अली साढ़े सावा बिच जिंदगी गुजार दी है अली दिया छावा बिच अली दा है प्यार असा मंगे दुआवा बिच गूंजता जहान बिच नारा अली अली है मस्ता ते मलंगा दा गुजारा अली अली है जानदा है हाल अली सुनदा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

सिंधु राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सेवण जो शहबाज एयरपोर्ट 30 सालन खां गैर फाल बनियल बूबक भरसां कायम शहबाज एयरपोर्ट अख्तियारिन खां विसरी वयो। हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी सारा पानी बिजली ए रोड वड़ा मसला करार अपोजिशन जी तनकीद। गंबट में एचआईवी ते कंट्रोल न थी सको वधीक एक बार फोत अंग वधी अठ थी वयो। मेडिकल दाखिलाउन के लिए एमडीकेट टेस्ट 16 अगस्त ते वठण जो ऐलान। महंगाई जो तूफान पटाटन टमाटन मुर्गी खीर दही सुधो 25 जरूरी शयन जा अघ वधी वया। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुझी सकंदा सिंध बजट साल 2026-27 तालीम सेहत के तरजीह तरक्याती बजट में घटताई।

सिंध जे नए माली साल वारे बजट ते सिंध असेंबली में बहस काल बे दिन भी जारी रहो। हुकूमती ए मुखालिफ धुर मेंबरन पारा एक बे ते इल्जामन ए तनकीदन वारो सिलसिलो काल भी जारी रहो। हुकूमती मेंबरन सिंध जे वडे वजीर के मुश्किल मुआशी सूरत हाल में मुतवाजन बजट पेश करण ते मुबारकबाद दिनी। जडे तो मुखालिफ धुर जे मेंबरन चयो त बजट जी तैयारी दौरान उन्हनि खे एतमाद भी न वरतो वियो ऐं उहे उन खे रद्द कनि था। पीपी मेंबर मारवी राष्ट्रीय चयो त मुखालिफ धुर वॾे वज़ीर जे तकरीर खे ॿुधण खां सवाइ बाइकाट करे पंहिंजे माण्हुनि सां ज़्यादती कई आहे। सिंध हुकूमत सूबे जे तरक़ीअ जे लाइ बहितरीन ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि। सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल बहितरीन आहे, पर जेको बि मनशियात जो वापार में मुलविस आहे हुन खे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। एम क्यू एम जे अब्दुल बासत चयो त सिंध में करप्शन उरूज ते आहे, पोइ एंटी करप्शन इदारो करप्शन के कीअं रोके सघंदो। एंटी करप्शन जी पंहिंजी इमारत में करप्शन थी। एम क्यू एम जे डायरेक्टर फौजिया हमीद चयो त कराचीअ में सभु कुझु ठीक न आहे, माण्हू पाणीअ जे लाइ भॼी रहिया आहिनि। शहर में पाणी, बिजली या गैस न आहे, माण्हू मातम करण बदिरां पाणी जे टैंकरनि पुठियां भॼी रहिया आहिनि। बजट में को बि अवामी भलाई जो प्रोग्राम न आहे। एम क्यू एम मेंबर एजाज़ुल हक चयो त हीउ हिकु गैर जमहूरी बजट आहे जंहिंखे असां रद्द करियूं था। भूबक भरिसां क़ाइम शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो, 30 सालनि खां गैर फ़आल बणियल रहियो। 1993 में पीपी दौर में उन वक़्त जे वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह जे कोशिशुनि सां भूबक वटि एयरपोर्ट ठाहियो वियो हो। एयरपोर्ट मुख़्तसर वक़्त ऑपरेशन रहण खां पोइ लाॻीतो बंदि आहे। गैर फ़आल खे 3 ॾहाका गुज़री विया, पर हिन वक़्त ताईं एयरपोर्ट बंदि पियल आहे। सार संभाल न लहण सबबि एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकमल तौर तबाह थी वियो आहे। कैमरा, लाउंज हॉल, वेटिंग एरिया, ऑफिसुनि जूं इमारतूं ज़बून हाल थी वियूं आहिनि। 2010 ऐं 2022 जे बोडुनि में एयरपोर्ट ॿुॾल रहियो, जंहिं करे काफ़ी सामान लुढ़ी वियो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाइ लॻल लखे रुपियनि जा सोलर प्लेटूं पिण चोर लाहे विया, जंहिं करे एयरपोर्ट ते मुकमल ऊंदाही छायल आहे। गंबट ऐं आसपास जे इलाइक़नि में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो। गंबट जे कचे जे ॻोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो। नींगर जे घर में कोराम गर्भातियुनि खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती नींगर जे वारसनि ॿुधायो त नींगर मोहम्मद ताहिर खे बुखार थियो हो, जंहिंखे इलाज जे लाइ गिम्स अस्पताल में दाखिल करायो वियो हो, जिथे नींगर जी HIV पॉज़िटिव आई हुई, जंहिं बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हो। जंहिंजे लाड़काणे अस्पताल में इलाज हलंदड़ हो त हू फोत थी वियो आहे। हुन वक़्त ताईं HIV में मुबतला गंबट में फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो आहे ऐं 4 बारड़ा सिटी अस्पताल जे HIV वार्ड में दाख़िल आहिनि, जिन जो इलाज पिण हलंदड़ आहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD किट 2026 जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। PMDC मूजिब MBBS ऐं BDS प्रोग्रामनि में दाख़िला लाइ MD किट जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। MD किट 2026 जी दाख़िला टेस्ट हलंदड़ साल 16 अगस्त ते थींदी। MD किट आचर 16 अगस्त ते सुबुह 10 वॻे सॼे मुल्क में हिक ई वक़्तु वरितो वेंदो। पंजाब में टेस्ट कराइण जी ज़िमेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया खे ॾिनी वई आहे। रियाज़ में मौजूदु उमेदवारनि जे लाइ बि टेस्ट जी ज़िमेवारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खे सौंपी वई आहे। उमेदवारनि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 खां शुरू थींदी। आम फीस सां रजिस्ट्रेशन जी आख़िरी तारीख़ 8 जुलाई 2026 मुक़रर कई वई आहे। देर सां रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 ताईं कराए सघिबी। पाकिस्तान अंदर क़ाइम टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुक़रर कई वई आहे। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया हूंदी। बिन अलाक़वामी टेस्ट सेंटरनि जे लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुक़रर कई वई आहे, जॾहिं त देर सां रजिस्ट्रेशन जी फीस 55,000 रुपया हूंदी। सिंध में हफ़्तेवार महांगाई 0.76% वधी वई, जंहिं खां पोइ महांगाई जी मजमूई सालियानी शरह 15.28% थी वई आहे। शुमारियात खाते तरफ़ां महांगाई बाबति जारी कयल हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिब हिकु हफ़्ते दौरान 25 ज़रूरी शयुनि जी क़ीमतुनि में वाध रिकॉर्ड कई वई। रिपोर्ट मूजिब हफ़्ते दौरान 11 शयूं सस्तियूं थियूं ऐं 15 जा अघ बरक़रार रहिया, जॾहिं त हिकु हफ़्ते अंदरि टमाटा 16.65% महांगा थिया, पटाटा 6.82% महांगा थिया, कुकड़ 5.60%, वॉशिंग सोप जी क़ीमत में 1.16% वाध थी,
खीर ॾही बाकरे गोश्त ऐं आनंद समेत ॿियनि शयुनि जी क़ीमतुनि में बि वाध रिकॉर्ड कई वई जॾहिं त LPG जी क़ीमत 0.51% वधी। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हिकु हफ़्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया, थूम 2.51% ऐं केला 1.28% सस्ता थिया। उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 0.52% घटाई थी, जॾहिं त दालनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत में 8 पुलिस आफ़िसरनि जे मुक़ररी सां तकरार शुरू थी वियो आहे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़रर 8 पुलिस आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां आफ़िसर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस आफ़िसरनि वफ़ाकी हवाले करण खां जवाब ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 आफ़िसरनि ख़िलाफ़ सख़्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफ़िसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद, 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज़ ऐं ॿिया शामिल, काशिफ आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ुर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 के लिए 3562 अरब रुपयन का वधिक जी बजट पेश कर छी है, जैमें तालीम, सेहत, बल्दियाती खिदमतुन समाजी तहफुज के शोबन के खास तरजीह दिनी वही है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह पारा सूबाई असेंबली में पेश कल बजट में सरकारी मुलाजमन रिटायर्ड मुलाजमन लाए पघार पेंशन में 7% वाध जो पिण ऐलान किया वो। बजट दस्तावेज मूजिब सूबे की आमदनी जो सब का वो जरियो वफा का मिलंद रकमू रहंद जिन जो काथो 2263 अरब रुपये का लगाया वो है, जो मजमू आमदनी जो तकरीबन बांगे टे हिस्सों बणजे तो। उन सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, सरमाएदारी ओगाड़ियों 68 अरब 34 करोड़ रुपया, वफाकी ग्रांट्स 64 अरब 33 करोड़ रुपया रखा वह। खर्चन के हवाले से बजट जो वो हिस्सो पघारों पेंशन से खर्च किया वो। दस्तावेजन मुताबिक मजमू बजट जो 50% हिस्सों पघारों पेंशन लाए मुख्तस वो है, जडे त 38% ग्रांट्स सब्सिडीज, 8% ऑपरेशन मेंटेनेंस बाकी हिस्सों कर्जन की अदायगी मरम्मत लाए रखो वो है। तरक्याती मनसूबन बाबत हुकूमत ईंदड़ माली साल लाए 720 अरब 38 करोड़ रुपये जो तरक्याती बजट तजवीज़ किया है, जो गुजरियल साल के 1018 अरब रुपये के भेट में 29% घट है, जडे त परदेही सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाए 256 अरब 5 करोड़ रुपया मुख्तस किया वह। तालीम के बजट में सब का अहमियत दिनी वही है, जै लाए 620 अरब रुपया मुख्तस किया वह। स्कूलन के मखसूस बजट में इजाफो कर उनके 22.64 करोड़ रुपये तक पहुंचाया वो है, जडे त यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स में भी 10% वाध कई वही है। सेहत के शोबे के लिए 393 अरब 16 करोड़ रुपया रखा वह, जिन में 148 अरब 17 करोड़ रुपया वडिन अस्पतालों सेहत के मरकजन के ग्रांट्स तौर फराहम किया वा। बल्दियाती खिदमतुन के लिए 306 अरब रुपया, अमन अमान के लिए 222 अरब 30 करोड़ रुपया, ज़रात खुराक लाए 61 अरब 90 करोड़ रुपया, समाजी खिदमतुन के लिए 57 अरब 90 करोड़ रुपये का मुख्तस किया वह। गरीब कमजोर तबके की मदद के लिए हुकूमत नौ फलाही मनसूबन जो पिण ऐलान किया है, बेनज़ीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनज़ीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम नंढन कारोबारन के मदद के लिए 80 रुपया रखा वह। स्पेशल मानून के लिए मददगार औजारन, लेंस सपोर्ट गोगल ग्लासेस की फराहमी के लिए पिण 1.1 अरब रुपया मुख्तस किया वह। बे पास बजट इजलास दौरान अपोजिशन जमायत सख्त एहतजाज किया, एमक्यूएम पाकिस्तान बजट तकरीर जो बायकाट किया, जडे अपोजिशन अगवान अली खुर्शीदी बजट से एतराज कन्दे अपोजिशन के एतमाद भी न वरतो वो है, जमहूरियत की रवायत की पासदारी न थियण सबब एहतजाज जारी रहंदा। इन बजट में तालीम, सेहत समाजी तहफुज के तरजीह दियण से अवामी भलाई से ध्यान दिनों वो है, पर तरक्याती बजट में घटताई मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबन से असर विझी सके थी। हुकूमत लाए वो चैलेंज हों मुख्तस कल फंडन के शफाफ नमूने इस्तेमाल कदे अवाम तई हकीकी फायदा पहुंचाया वजन।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

0: सिंध जो आवाज उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सेवण जो शहबाज एयरपोर्ट 30 सालन खां गैर फाल बनियल बूबक भरसा कायम शहबाज एयरपोर्ट अख्तियारिन खां विसरी वयो हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी सारा पानी बिजली ए रोड वडा मसला करार अपोजिशन जी तनकीद गंबट में एचआईवी ते कंट्रोल न थी सक्यो वधीक एक बार फोत अंग वधी अठ थी वयो मेडिकल दाखिलाउन जे लाए एमडीकेट टेस्ट 16 अगस्त ते वठण जो ऐलान महंगाई जो तूफान पटाटन टमाटन मुर्गी खीर दही सुधो 25 जरूरी शयन जा अघ वधी वया आई स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुझी सकंदा सिंध बजट साल 2026-27 तालीम ए सेहत के तरजीह तरक्याती बजट में घटताई

सिंध जे नए माली साल वारे बजट ते सिंध असेंबली में बहस काल्ह ॿिए ॾींहुं बि जारी रहियो। हुकूमती ऐं मुख़ालिफ़ धुर मेंबरनि पारां हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि ऐं तनक़ीदुनि वारो सिलसिलो काल्ह बि जारी रहियो। हुकूमती मेंबरनि सिंध जे वॾे वज़ीर खे मुश्किल मुआशी सूरतहाल में मुतवाज़िन बजट पेश करण ते मुबारकबाद ॾिनी, जॾहिं त मुख़ालिफ़ धुर जे मेंबरनि चयो त बजट जी तयारी दौरान उन्हनि खे एतमाद बि न वरितो वियो ऐं उहे उन खे रद्द कनि था। पीपी मेंबर मारवी राष्ट्रीय चयो त मुख़ालिफ़ धुर वॾे वज़ीर जे तकरीर खे ॿुधण खां सवाइ बाइकाट करे पंहिंजे माण्हुनि सां ज़्यादती कई आहे। सिंध हुकूमत सूबे जे तरक़ीअ जे लाइ बहितरीन ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि। सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल बहितरीन आहे, पर जेको बि मंशियात जो वापार में मुलविस आहे उन खे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। एम क्यू एम जे अब्दुल बासत चयो त सिंध में करप्शन उरूज ते आहे, पोइ एंटी करप्शन इदारो करप्शन खे कीअं रोके सघंदो। एंटी करप्शन जी पंहिंजी इमारत में करप्शन थी। एम क्यू एम जे डायरेक्टर फौजिया हमीद चयो त कराचीअ में सभु कुझु ठीक न आहे, माण्हू पाणीअ जे लाइ भॼी रहिया आहिनि। शहर में पाणी, बिजली या गैस न आहे, माण्हू मातम करण बदिरां पाणी जे टैंकरनि पुठियां भॼी रहिया आहिनि। बजट में को बि अवामी भलाई जो प्रोग्राम न आहे। एम क्यू एम मेंबर एजाज़ उल हक़ चयो त हीउ हिकु गैर जमहूरी बजट आहे जंहिंखे असां रद्द करियूं था। भूबक भरिसां क़ाइम शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो, 30 सालनि खां गैर फ़ाल बणियल रहियो। 1993 में पीपी दौर में उन वक़्त जे वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह जे कोशिशुनि सां भूबक वटि एयरपोर्ट ठाहियो वियो हो। एयरपोर्ट मुख़्तसर वक़्त ऑपरेशन रहण खां पोइ लागीतो बंदि आहे। गैर फ़ाल खे 3 ॾहाका गुज़री विया, पर हिन वक़्त ताईं एयरपोर्ट बंदि पियल आहे। सार संभाल न लहण सबबि एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकमल तौर तबाह थी वियो आहे। कैमरा, लाउंज हॉल, वेटिंग एरिया, ऑफिसुनि जूं इमारतूं ज़बून हाल थी वियूं आहिनि। 2010 ऐं 2022 जे ॿोॾियुनि में एयरपोर्ट ॿुॾल रहियो, जंहिं करे काफ़ी सामान लुढ़ी वियो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाइ लॻल लखें रुपियनि जा सोलर प्लेटूं पिण चोर लाहे विया, जंहिं करे एयरपोर्ट ते मुकमल ऊंदाही छायल आहे। गंबट ऐं आसपास जे इलाइक़नि में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो। गंबट जे कचे जे ॻोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो। नींगर जे घर में कोराम गर्भातियुनि खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती नींगर जे वारसनि ॿुधायो त नींगर मोहम्मद ताहिर खे बुखार थियो हो, जंहिंखे इलाज जे लाइ गिम्स अस्पताल में दाखिल करायो वियो हो, जिथे नींगर जी HIV पॉज़िटिव आई हुई, जंहिं बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हो। जंहिंजे लाड़काणे अस्पताल में इलाज हलंदड़ त हू फोत थी वियो आहे। हुन वक़्त ताईं HIV में मुबतला गंबट में फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो आहे ऐं 4 बारड़ा सिटी अस्पताल जे HIV वार्ड में दाख़िल आहिनि, जिन जो इलाज पिण हलंदड़ आहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD किट 2026 जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। PMDC मूजिब MBBS ऐं BDS प्रोग्रामनि में दाख़िला लाइ MD किट जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। MD किट 2026 जी दाख़िला टेस्ट हलंदड़ साल 16 अगस्त ते थींदी। MD किट आचर 16 अगस्त ते सुबुह 10 वॻे सॼे मुल्क में हिकु ई वक़्तु वरितो वेंदो। पंजाब में टेस्ट कराइण जी ज़िमेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया खे ॾिनी वई आहे। रियाज में मौजूद उमेदवारनि जे लाइ बि टेस्ट जी ज़िमेवारी शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खे सौंपी वई आहे। उमेदवारनि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 खां शुरू थींदी। आम फीस सां रजिस्ट्रेशन जी आख़िरी तारीख़ 8 जुलाई 2026 मुक़रर कई वई आहे। देर सां रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 ताईं कराए सघबी। पाकिस्तान अंदर क़ाइम टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुक़रर कई वई आहे। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया हूंदी। बैन अलाक़वामी टेस्ट सेंटर जे लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुक़रर कई वई आहे, जॾहिं त देर सां रजिस्ट्रेशन जी फीस 55,000 रुपया हूंदी। सिंध में हफ़्तेवार महांगाई 0.76% वधी वई, जंहिं खां पोइ महांगाई जी मजमूई सालियानी शरह 15.28% थी वई आहे। शुमारियात खाते तर्फ़ां महांगाई बाबति जारी कयल हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि हिकु हफ़्ते दौरान 25 ज़रूरी शयुनि जी क़ीमतुनि में वाध रिकॉर्ड कई वई। रिपोर्ट मूजिबि हफ़्ते दौरान 11 शयूं सस्तियूं थियूं ऐं 15 जा अघ बरक़रार रहिया, जॾहिं त हिकु हफ़्ते अंदर टमाटा 16.65% महांगा थिया, पटाटा 6.82% महांगा थिया, कुकड़ 5.60%, वॉशिंग सोप जी क़ीमत में 1.16% वाध थी,
खीर ॾही बाकरे गोश्त ऐं आनंद समेत ॿियनि शयुनि जी क़ीमतुनि में बि वाध रिकॉर्ड कई वई जॾहिं त LPG जी क़ीमत 0.51% वधी। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हिकु हफ़्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया, थूम 2.51% ऐं केला 1.28% सस्ता थिया। उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 0.52% घटाई थी, जॾहिं त दालनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत में 8 मुक़रर तां तकरार शुरू थी वियो आहे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़रर 8 पुलिस आफ़ीसरनि वफ़ाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफ़ीसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां फ़ैसिलो करे वरितो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस आफ़ीसरनि हवाले करण खां जवाब ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे 8 आफ़ीसरनि ख़िलाफ़ सख़्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफ़ीस फारूक अहमद, 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज़ ऐं ॿिया काशिफ आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ उर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 के लिए 3562 अरब रुपयन का वधिक जी बजट पेश कर छी है, जैमें तालीम, सेहत, बल्दियाती खिदमतुन समाजी तहफुज के शोबन के खनी वही है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह पारा सूबाई असेंबली में सरकारी मुलाजमन रिटायर्ड मुलाजमन लाए पघार पेंशन में 7% वाध जो पिण ऐलान कयो वियो। बजट दस्तावेज मूजिब सूबे की आमदनी जो सब का वो जरियो वफा का मिलंदड़ रकमू रहंद जिन जो काथो 2263 अरब रुपये का लगाया वो है, जो मजमू आमदनी जो तकरीबन बांगे 3 हिस्सो बणजे तो। उन सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, ओगाड़ियों 68 अरब 34 करोड़, वफाकी ग्रांट्स 64 अरब 33 करोड़ रुपया रखा वह। खर्चन के हवाले से बजट जो वो हिस्सो पघारों पेंशनों से खर्च किया वो दस्तावेजन मुताबिक जो 50% पेंशनों लाए मुख्तस किया वो है, जडे त 38% ग्रांट्स सब्सिडीज, 8% ऑपरेशन मेंटेनेंस बाकी हिस्सो कर्जन की अदायगी मरम्मत लाए रखो वो है। तरक्याती मनसूबन बाबत हुकूमत ईंदड़ माली साल लाए 720 अरब 38 करोड़ रुपये जो तरक्याती बजट तजवीज़ किया है, जो गुजरियल साल के 1018 अरब रुपये के भेट में 29% घट है, जडे त परदेही सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाए 256 अरब 5 करोड़ रुपया मुख्तस कया वह। तालीम के बजट में सब का अहमियत दिनी वही है, जै लाए 620 अरब रुपया मुख्तस कया वह। स्कूलन के मखसूस बजट में इजाफो कर उन 22 अरब 64 करोड़ रुपये तीन पहुंचाया वो है, जडे त यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स में भी 10% वाध कई वही है। सेहत के शोबे के लिए 393 अरब 16 करोड़ रुपया रखा वह, जिन में 148 अरब 17 करोड़ रुपया वडिन अस्पतालों सेहत के मरकजन के ग्रांट्स तौर फराहम कया वा। बल्दियाती खिदमतुन के लिए 306 अरब रुपया, अमन अमान के लिए 222 अरब 30 करोड़ रुपया, ज़रात खुराक लाए 61 अरब 90 करोड़ रुपया, समाजी खिदमतुन के लिए 57 अरब 90 करोड़ रुपये का मुख्तस कया वह। गरीब कमजोर तबके की मदद के लिए हुकूमत नौ फलाही मनसूबन जो पिण ऐलान किया है, बेनज़ीर हारी कार्ड, किचन, बेनज़ीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम नंढन कारोबारन के मदद के लिए 80 रुपया रखा वह। स्पेशल मानून के लिए मददगार औजारन, लेंस सपोर्ट गोगल ग्लासेस की फराहमी के लिए पिण 1.1 अरब रुपया मुख्तस कया वह। बे पास बजट इजलास दौरान अपोजिशन जमायत सख्त एहतजाज किया, एमक्यूएम पाकिस्तान बजट तकरीर जो बायकाट किया, जडे अपोजिशन अगवान अली खुर्शीदी बजट से एतराज कन्दे अपोजिशन के एतमाद में न वरतो वो है, जमहूरियत की रवायत की पासदारी न थियण सबब एहतजाज जारी रहंदा। इन बजट में तालीम, सेहत समाजी तहफुज के तरजीह दियण से अवामी भलाई से ध्यान दिनों वो है, पर तरक्याती बजट में घटताई मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबन से असर विझी सके थी। हुकूमत लाए वो चैलेंज हों मुख्तस कल फंडन के शफाफ नमूने इस्तेमाल कदे अवाम तई हकीकी फायदा पहुंचाया वजन।

0: 107.5 FM।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलत शहबाज
2: की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटिया जो बुधंदा रहो
1: जिसका है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: की आवाज।

0: हक सच जो आवाज जी 91.6 सिंध जो आवाज उधर
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। ब्यूटी स्किन जो राज़, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगदे माया गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सेवण जो शहबाज़ एयरपोर्ट 30 सालन खां गैर फाल बणियल बूबक भरसां एयरपोर्ट अख्तियारिन खां विसरी वयो हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी सारा पाणी बिजली ऐं रोड वॾा मसला करार अपोज़िशन गंबट में एचआईवी ते कंट्रोल वधीक जे लाइ टमाटन मुर्गी वधी विया स्पेशल रिपोर्ट में सिंध बजट सेहत के तरजीह तरक्याती ताईं सिंध के नए माली साल वाले बजट ते सिंध असेंबली में बहस काल बे दिन भी जारी रहो हुकूमती मुखालिफ धुर मेंबरन पारा एक बे ते इल्जामन तनकीदुन वारो सिलसिलो काल भी जारी रहो हुकूमती मेंबरन सिंध के वडे वजीर के मुश्किल मुआशी सूरत हाल में मुतवाजन बजट पेश करण ते मुबारकबाद दिनी जडे तो मुखालिफ धुर के मेंबरन बजट की तैयारी दौरान उन्हें एतमाद भी न वरतो वो उन रद्द कन था पीपी मेंबर मारवी राष्ट्रीय चो तो मुखालिफ धुर वडे वजीर के तकरीर के बुधण का सवाई पैदाती कई है सिंध हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए बेहतरीन खिदमतू सर अंजाम दिन सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतरीन है पर जो भी मंशियात जो व्यापार में मुलविस है उनके सख्त सजा दिनी वे एमक्यूएम के अब्दुल बासत चो तो सिंध में करप्शन उरूज से है एंटी करप्शन इदारो करप्शन के क्या रोके एंटी करप्शन की पांजी इमारत में करप्शन थी एमक्यूएम के डायरेक्टर फौजिया हमीद चो तो कराची में सब कुछ ठीक ना है मानू पानी के लिए भजी रहा शहर में पानी बिजली या गैस ना है मानू मातम करने बदरा पानी के टैंकर पुठियां भजी रहा बजट में को भी अवामी भलाई जो प्रोग्राम ना है एमक्यूएम में

एजाज़ उल हक़ चयो त हीउ हिकु गैर जमहूरी बजट आहे जंहिंखे असां रद्द करियूं था। भूबक भरिसां एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो, टीहनि सालनि खां गैर फ़आल बणियल रहियो। 1993 में पीपी दौर में उन वक़्त जे वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह जे कोशिशुनि सां भूबक वटि एयरपोर्ट ठाहियो वियो हो। एयरपोर्ट मुख़्तसर वक़्तु ऑपरेशन रहण खां पोइ लागीतो बंदि आहे। गैर फ़आल खे 3 ॾहाका गुज़री विया पर हिन वक़्त ताईं एयरपोर्ट बंदि पियल आहे। सार संभाल न लहण सबबि एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकमल तौर तबाह थी वियो आहे। कैमरा, लाउंज हॉल, वेटिंग एरिया, ऑफिसुनि जूं इमारतूं ज़बून हाल थी वियूं आहिनि। 2010 ऐं 2022 जे ॿोॾियुनि में एयरपोर्ट ॿुॾल रहियो, जंहिं करे काफ़ी सामान लुढ़ी वियो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाइ लॻल लखें रुपियनि जा सोलर प्लेटूं पिण चोर लाहे विया, जंहिं करे एयरपोर्ट ते मुकमल ऊंदाही छायल आहे। गंबट ऐं आसाईवीअ ते कचे जे ॻोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो। नींगर जे घर में कोराम, घर भातियुनि खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती नींगर जे वारसनि ॿुधायो त नींगर मोहम्मद ताहिर खे बुखार थियो हो, जंहिंखे इलाज जे लाइ गिम्स इस्पताल में दाख़िल करायो वियो हो। नींगर जी HIV पॉज़िटिव आई, बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे इस्पताल रेफर कयो वियो हो। जंहिंजे लाड़काणे इस्पताल में इलाज हलंदड़ हो त हू फोत थी वियो आहे। हुन वक़्त ताईं HIV में मुबतला गंबट में फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो आहे ऐं 4 बारड़ा सिटी इस्पताल जे HIV वार्ड में दाख़िल आहिनि, जिन जो इलाज पिण हलंदड़। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD केट 2026 जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। PMDC मूजिब MBBS ऐं BDS प्रोग्राम वियो आहे। दाखिला टेस्ट हलंदड़ साल MD केट आचर 16 अगस्त ते सुबुह 10 वॻे सॼे मुल्क में हिकु ई वक़्तु वरितो वेंदो। पंजाब में ज़िमेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया खे ॾिनी वई आहे। रियाज़ में मौजूद उमेदवारनि जे लाइ बि टेस्ट जी ज़िमेवारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खे सौंपी वई आहे। उमेदवारनि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 खां शुरू थींदी। आम फीस सां रजिस्ट्रेशन जी आख़िरी तारीख़ 8 जुलाई 2026 मुक़रर कई वई आहे। देरि सां रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 ताईं कराए सघिबी। पाकिस्तान अंदर क़ाइम टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुक़रर कई वई आहे। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया हूंदी। बैन अलाक़वामी टेस्ट सेंटरनि जे लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुक़रर कई वई आहे, जॾहिं त देरि सां रजिस्ट्रेशन जी फीस 55,000 रुपया हूंदी। सिंध में हफ़्तेवार 74% खां पोइ 15.28% थी वई आहे। शुमारियात खाते तरफ़ां महांगाई बाबति जारी कयल हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि हिकु हफ़्ते दौरान 25 ज़रूरी शयुनि जी क़ीमतुनि में रिपोर्ट मूजिबि हफ़्ते दौरान 11 शयूं सस्तियूं थियूं ऐं 15 जा अघ बरक़रार रहिया, जॾहिं त हिकु हफ़्ते अंदर टमाटा 16.65% महांगा थिया, पटाटा 6.82% महांगा थिया, कुकड़ 5.60%, वॉशिंग सोप जी क़ीमत में 1.16% वाध थी, खीर, ॾही, बाकरे गोश्त ऐं आनंद समेत ॿियनि शयुनि जी क़ीमतुनि में बि वाध रिकॉर्ड कई वई, जॾहिं त LPG जी क़ीमत 0.51% वधी। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हिकु हफ़्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया, थूम 2.51 ऐं केला 1.28% सस्ता थिया। उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 0.52% घटाई थी, जॾहिं त दालनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत में 8 पुलिस आफ़िसरनि जे मुक़ररी तां तकरार शुरू थी वियो आहे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़रर 8 पुलिस आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां आफ़िसर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस आफ़िसरनि वफ़ाकी हवाले करण खां जवाब ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 आफ़िसरनि ख़िलाफ़ सख़्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफ़िसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद, 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज़ ऐं ॿिया शामिल, आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ उर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल। 1,562 अरब रुपयनि खां वधीक जी बजट पेश करे छॾी आहे, जंहिं में तालीम, सिहत, बलदियाती ख़िदमतुनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबनि खे ख़ासि तरजीह ॾिनी वई आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां सूबाई असेंबली में पेश कयल बजट में सरकारी मुलाज़मनि ऐं रिटायर्ड मुलाज़मनि लाइ पघार ऐं पेंशन में 7% वाध जो

पिण ऐलान कयो वियो। बजट दस्तावेज़ मूजिब सूबे जी आमदनी पाक खां मिलंदड़ रक़मूं रहंदियूं, जिन जो काथो 2,263.3 अरब बणिजे थो। उन खां सवाइ सूबाई 89 अरब रुपया सरमाएदारी ओगाड़ियूं रुपया रखिया विया आहिनि। हवाले सां बजट जो वॾो हिसो पघारुनि ऐं पेंशनुनि ते ख़र्च कयो वेंदो। दस्तावेज़नि मुताबिक़ मजमूई बजट जो 50% हिसो पघारुनि ऐं पेंशनुनि लाइ मुख़्तस कयो वियो आहे, जॾहिं त 38% ग्रांट्स ऐं सब्सिडीज़ ऐं बाक़ी मरम्मत लाइ रखियो वियो आहे। तरक़ियाती मनसूबनि बाबति हुकूमत ईंदड़ माली साल लाइ 720.38 अरब रुपियनि जो तरक़ियाती बजट तजवीज़ कयो आहे, जेको गुज़िरियल साल जे 1,018 अरब रुपियनि जे भेट में 29% घटि आहे, जॾहिं त पारा सां हलंदड़ मनसूबनि लाए 156.5 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। स्कूलनि जे मखसूस बजट में इज़ाफ़ो करे उन खे 22.64 अरब रुपियनि ताईं पहुचायो वियो आहे, जॾहिं त यूनिवर्सिटियुनि जी ग्रांट्स में बि 10% जे लाए 393.16 अरब रुपया रखिया विया, जिन मां 148.17 अरब रुपया वॾनि इस्पतालुनि ऐं सिहत जे मर्कज़नि खे ग्रांट्स तौर फराहम कया वेंदा। बल्दी जे लाइ 3.30 अरब रुपया ज़रात ऐं समाजी ख़िदमतुनि जे लाइ 57.90 अरब रुपियनि खां वधीक मुख़्तस कया विया आहिनि। गरीब ऐं कमज़ोर तबके जी मदद जे लाइ हुकूमत नओं फलाही मनसूबनि जो पिण ऐलान कयो आहे। बेनज़ीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनज़ीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम ऐं नंढनि कारोबारनि जे मदद जे लाइ 80 रुपया रखिया विया आहिनि। स्पेशल माण्हुनि जे लाइ मददगार औज़ारनि, लेंस सपोर्ट ऐं गोगल ग्लासेस जी फराहमी जे लाइ पिण 1.1 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। ॿिए पासे बजट इजलास दौरान अपोज़ीशन जमायत सख़्त एहतजाज कयो। MQM पाकिस्तान बजट तक़रीर जो बाइकाट कयो, जॾहिं त अपोज़ीशन अॻवान अली खुर्शीदीअ बजट ते एतिराज़ कंदे अपोज़ीशन खे एतमाद में न वरितो वियो आहे ऐं जमहूरियत जी रवायत जी पासदारी न थियण सबबि एहतजाज जारी रहंदा। हिन बजट में तालीम, सिहत ऐं समाजी तहफ़ुज़ खे तरजीह ॾियण सां अवामी भलाई ते ध्यानु ॾिनो वियो आहे, पर तरक़ियाती बजट में घटिताई मुस्तक़बिल जे तरक़ियाती मनसूबनि ते असर विझी सघे थी। हुकूमत लाइ वॾो चैलेंज हूंदो त मुख़्तस कयल फंडनि खे शफ़ाफ़ नमूने इस्तेमाल कंदे अवाम ताईं हक़ीक़ी रहिया वञनि। جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جے سندھ راؤنڈ اپ تائیں گلاب خان بہن کے دین اجازت ہے اللہ نگہبان۔